वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: California. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
3: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
4: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
4: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9816 14 16 99

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: ओहो आज डाई हाँ नहीं मजा लागा थो मजा से दवाई करे ना कहतो
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात तो ठीक है कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
2: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
1: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजुइना कान कम सुन्ना कान दम्म हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ति रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगैना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत जस्तेक बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ट
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
1: खुशी के खबर खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 98-482-80-465

0: मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो। अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
1: ल है बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
0: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
1: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसिसिए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
0: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
2: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसिसिए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
0: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 28 195 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98 480 2697, 98 580 2697 और 98 014 83 697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
2: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
1: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
2: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
3: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
1: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
2: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
3: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 9861414199।
4: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
5: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टिभीएस शोरूम खुल्यो।
4: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा।
5: कोहलपुरमै पाइन्छ टिभीएस का नयाँ बाइक र स्कुटर, दमदार पर्फर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पियर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
4: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
5: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 9125226711 र 9820187386। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
6: चर्चा छ मार्केटमा, हाम्रो नाम घन्किन्छ।
7: हाम्रो गाउँ हाम्रो सहर, सफा सडक, गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र विकासका नयाँ सम्भावना,
5: यी सबैको बलियो आधार हो हामी सबैले इमानदारी पूर्वक तिरेको कर।
7: समयमै कर तिरौ, जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिऊ,
5: किनकि आजको हाम्रो करले नै भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ।
7: कर तिरौ समयमै, विकास गरौं सँगै।
5: कर हाम्रो दायित्व, समृद्धि हाम्रो लक्ष्य।
7: आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज र रेडियो कृष्णसार एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
8: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
9: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
8: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
9: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है, और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
8: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देत हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
9: मेडिकेयर क्लिनिक, नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11, बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 9769411786, 9822942377।
10: सबके संयुक्त आवाज, मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
11: Back to back. Back to back.
12: In this song.
11: On. Stay tuned.

0: drip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: Beer Dental.
3: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरकी लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-532-375।
5: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
3: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरपिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
6: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49451।
7: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
8: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि।
9: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, ना ही ठीक आते।
10: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
11: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
10: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाब, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
10: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
13: अम्मा के दवाई करावे के, लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
14: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैली चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
13: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
14: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथेन NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
13: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ।
14: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सब मेयर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9804483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: Back to back. Back to back.
3: In this song on
2: Stay tuned.

0: एफओ मेगाहर्ज कृष्णसार जतिगति
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है कहाँ जाए तो ठीक रही तनी बताई दो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल आपके अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल

0: सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
1: हरेक सामान को खरीद में 1000 देखि 20000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
0: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
1: संपर्क 97051148470।
0: सोफा हब नेपालगंज,
1: विश्वास में नंबर 1,
0: क्वालिटी में सबैभन्दा बेस्ट।

0: Toilet Pony, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तह दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज
5: मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: Patagonia.
1: Extreme energy drink.
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98480213।
4: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारो भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
5: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते है। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़ती स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
4: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
5: जानकारी रहक चाहे कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
6: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
7: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
6: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
7: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे के साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
6: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
7: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
2: Back to back, back to back. In this song on Stay tuned. Back to back, back to back. In this song on Stay tuned.

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125-26711 र 98-20-18-37-86। नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
1: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
4: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
1: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
4: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
1: अनकल सेवाहरू
4: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ईसीजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिसा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म
4: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
6: हाय रे दिदिया हमार टिहुनी बहुत पीरा थे बहुत दवाई कराए डाले नाई ठीक आते।
7: सुनो बहनी खुशी के खबर
8: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाते है और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई पित्त थैली के पथरी अपेंडिक्स हार्निया हाइड्रोसील बवासीर फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग ब्रे और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव रीढ़ टिहुनी पिराप झंझनाहट हो नस पिराप झमझमाप हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी निसंतानता गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन यूरो सर्जन जनरल कैंसर मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल मिश्रा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए संपर्क नंबर 081-531-000।
10: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
11: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
10: विशेष सुविधा।
11: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
9: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-530-598।
12: हाम्रो गाउँ हाम्रो शहर, सफा सडक, गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र विकासका नयाँ सम्भावना,
13: यी सबैको बलियो आधार हो हामी सबैले इमानदारी पूर्वक तिरेको कर।
12: समयमै कर तिरौं, जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउँ,
13: किनकि आजको हाम्रो करले नै भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ।
12: कर तिरौं समयमै, विकास गरौं सँगै।
13: कर हाम्रो दायित्व, समृद्धि हाम्रो लक्ष्य।
12: आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज र रेडियो कृष्णसार एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
14: Back to back, back to back.
15: In this song on Krishnasar
14: FM. Stay tuned. Back to back, back to back.
15: In this song on
14: Krishnasar FM. Stay tuned.

0: एफओ मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: जे अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि।
3: बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375।
6: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
7: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
6: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
7: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 98-44-88-35-75 और 98-08-25-40-37।
8: नींद ना आए हमको हाए जग सोता है।
6: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
7: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
6: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
7: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जात है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
6: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगन के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बिरामी लोगन के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगन के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
9: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9840206697, 9850231697 और 9804483697।
10: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
11: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
9: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
11: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
9: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
12: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
9: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 9769411786, 9824292377।
10: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
13: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
2: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
3: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
4: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
5: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
6: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक थे।
7: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
8: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यह मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-00।
10: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
11: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
10: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
11: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
10: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
11: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
10: सम्पर्क नम्बर 081-535-717। हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
11: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि। नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन, हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
10: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
11: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
11: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेक्रा आर्मी ब्यारेक सामुन्ने राप्ती रोड बाके सञ्चालक पुरन चौधरी
10: सम्पर्क नम्बर 9848206697 9858023697 र 9800143697
11: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ नियमित कानको जाँच गरौ
12: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

सम्बद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: बैंक, वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप, वॉलेट, कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दै छ, थायराइड को समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
2: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
1: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
2: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
1: कस्तो खबर?
2: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियू, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
1: ए, साँच्चै?
2: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
1: ए, त्यो त झन् राम्रो
2: हो नि। डाक्टर पूनमाचारी एमबिबिएस, एमडी केयू, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएसकेयू, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
1: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
2: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
1: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
2: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
1: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
2: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
3: दाई, नाटबा, कहाँ जाइ लाग्लो त?
4: पेसाब लाग्टा चर्पी जाइ टुका।
3: ए, रुको नाट, कोसिन हो कला छे, मै टर्च लाइट लट्ठी देहेटु लेख जाव।
4: काजे चुनु लट्ठी वा टर्च लाइट?
3: का कर भाइ दाई, रातिक बेला बाहे निक्र पर्ला से वा टोइलेट जाइ पर्ला से जहिया फे टर्च लाइट बार्ख को लम्बा लट्ठी लेख के जाइ पर्था। का कर कि बर्खा छ्याक बा साँप रह सेक ठ, टर्च को अजराले सापन ड्या खसेक जाइ ठा, वो लट्ठी ठ्याक ठ्याक आव सुनख साँप भक्ठ का।
4: हो, कत्रा मजा सल्लाह डेली मार छोटकी छै।
3: दाई, हमर ना स्कूलिक मैडम सर हुँ र साँप नुक सिक्ना ठाउँ छ न्याङ पर्ला से वो काम कर पर्ला से जहिया फेठ होसियार भी पर्था गई ख सिखैल बाट का। आम छेटुवा दिउभा झपास अथवा ध्यान घास रलक ठाउँमा न्याङ पर्ला से लम्मा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी न्याङ पर्था गई ख कलबाट।
5: साँप बर्खा छ्याकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैठ। यी मौसममा आपन बस्यारामा पानी पैठना हुइला कोर्से सुक्खा ठाउँका खोजीमा ओकरा बाहिर निस्कठ।
6: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रममा फे साँप मानव बस्ती लग्घ आइसेक्ठ।
4: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाएक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जैठा।
7: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
8: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्यज्योति सही प्लान,
9: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि

0: Koyle Pony'a Extreme Energy Drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यम

0: कैकै रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
0: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
0: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
3: फेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल फेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9858030479 र 9848021380
4: शुल्कमा उत्कृष्ट शिक्षा कहाँ पाइएला
5: त्यसका लागि नेपालगञ्जको धम्बोजीमा अवस्थित सन्मिम इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल छँदैछ नि
4: हाम्रा विशेषताहरू
5: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक भएको
4: सुरक्षित वातावरण र यातायातको सुविधा भएको
5: मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइ
4: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड
5: वातानुकूलित कक्षा कोठा
4: अत्याधुनिक प्रयोगशाला खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू मार्फत विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा विशेष ध्यान दिइने
5: एसईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस विद्यालयमा कक्षा 11 व्यवस्थापन संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ
4: सिट सीमित छन् आजै भर्ना हुनुहोस्
5: सन्बिम इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल नेपालगञ्ज 1 धम्बोजी बाँके सम्पर्क नम्बर 081536422 98580 36422 98580 27994
6: यो कृष्ण सार FM
7: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: खुसीको खबर, यस कृपा हस्पिटल प्रालीमा मूत्र, मृगौला, पिसाब थैली तथा नली सम्बन्धी रोगको सबै अपरेशन दूरबीन र लेजर प्रविधिबाट गरिन्छ। यस लगायत पेट सम्बन्धीको सबै उपचार, पित्त थैलीको पत्थरी, अपेन्डिक्स, हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला लगायत पुरुषहरूमा लिङ्ग, वृय र अण्डकोष तथा उत्तेजना कम हुने समस्या र क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण अपरेशन तथा उपचारका साथै हात खुट्टा, ढाड तथा हाड जोड्ने दुख्ने, नसा दुख्ने, झमझमाउने, हड्डी टुटफुट भएको अपरेशनका साथै प्लास्टर पनि गरिन्छ।
1: डाक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कन्सल्टेन्ट सर्जन, युरो सर्जन, जनरल क्यान्सर, मूत्र तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ।
0: डाक्टर राहुल मिश्र, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन, हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
1: यस बाहेक मल्टी स्पेशलिस्ट रोगहरूको सेवाका लागि
0: कन्सल्टेन्ट मृगौला रोग विशेषज्ञ सेवा,
1: कन्सल्टेन्ट गायनोकोलोजिस्ट महिला प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा,
0: छाती, मुटु, थाइरोइड, सुगर, प्रेसर रोग विशेषज्ञ सेवा,
1: नाक, कान, घाँटी तथा टाउको रोग विशेषज्ञ सेवा
0: र छाला, यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ सेवा।
1: चौबिसै घण्टा इमर्जेन्सी र फार्मेसी सेवा उपलब्ध।
0: थप जानकारीको लागि कृपा हस्पिटल प्राली, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर 10, नेपालगञ्ज, वन कार्यालय नजिक नयाँ पेट्रोल पम्पको पश्चिम तर्फ। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-000 र 98-662-24-551।
2: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
3: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
2: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
3: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
2: कस्तो खबर?
3: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
2: ए, साँच्चै?
3: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
2: ए, त्यो त झन् राम्रो
3: हो नि। डाक्टर पुनम आचार्य, एमबिबिएस, एमडी केयु, IVF स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई, MBBS, MSKU, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
2: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
3: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
2: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
3: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
2: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
3: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
4: बधाई है भैया, सुने हैं बिटिया के बिहा ठीक हो गया है, यही सुन के आपसे मिले चली आई हैं।
5: हाँ तो बहनी, बिटिया के हो 16 साल में बढ़िया लड़का मिल गवा, अब तो चिंता खत्म हो गवा, तहे दिल भी हो गए।
4: भैया, बिटिया तो अभी 16 साल के खाली भाई है, आप बहुत बड़ा गलती करत हो। सुनो भैया, हम 16 साल की उम्र में यहाँ बिहार कह के आई रही, सब कहत रहे भागमानी है बिटिया, लेकिन हमार पढ़ाई छूटा, हमार सपना टूटा और हमार बचपनो छूट गवा। अब हमारा आदमी दूसरे विवाह करके अलग रहत है, हमार जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा है। यदि समय के यहाँ लौटाए मिलत तब तो कब्भो बाल विवाह न करी। यही मारे भैया मेहरबानी करके अपने बिटिया के यहाँ और पढ़ाओ अभी।
5: लेकिन बहनी, हम तो नेवता के कार्ड भी बांट दिए हन, अब समाज का कही, हमार बेइज्जत हो जाई।
4: भैया, समाज के कहा सब बात सही नहीं होते है। बाल विवाह से बिटियन के भविष्य खाली नहीं, पूरा परिवार के सपना टूट सकत है। नेपाल के संविधान 2072 से हर एक लड़का बिटियन के यहाँ बाल विवाह से सुरक्षित हो पावे व्यवस्था की ही है। नेपाल के कानून के हिसाब से 20 साल न पहुँचते विवाह करे या करावे नहीं मिलत है। ई मेर के भवा विवाह स्वतः बदर हो जाये। यदि 20 साल उम्र न पहुँचते बाल विवाह करे या करावे वाले के यहाँ 3 साल तक जेल और 30,000 रुपया तक जुर्माना हो सकत है।
5: ठीक है बहनी, तुम तो हमारा आँख खोल दियो, अब हमारे बिटिया के कांध में यहाँ विवाह के जिम्मेवारी न हो के सपना के किताब के बोझ हुई है, वो पढ़ के सक्षम हो जाये है तब उनके विवाह के बारे में सोचे।
4: हाँ, बाल विवाह परम्परा न हो, लड़का बिटियन के अधिकार के हनन हो।
6: बाल विवाह रोका जाए, बिटिया लोगन के भविष्य बचावा जाए।
7: सामाजिक विकास मंच SDF बांके वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल नेपाल और रेडियो कृष्णसार FM द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: Go le ponia. Extreme energy drink.
1: ई रिक्शा चालक लोगन में यहाँ नेपालगंज उप महानगर पालिका का अनुरोध मिति 2083 जेठ 12 से 18 गते तक ट्रैफिक सचेतना मूलक कार्यक्रम संपन्न हो चुका जानकारी करते सचेतना शुरू मिति से 60 दिन बाद ई रिक्शा लाइसेंस के बिना ई रिक्शा चलावे न पावे हो से तब तक नागरिकता के प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप में यहाँ साथन रख कर ई रिक्शा चलावे का अनुरोध है। साथन उप महानगर पालिका से लाइसेंस के खातिर फार्म भरे और परीक्षा तैयारी के खातिर निःशुल्क कक्षा संचालन की है। फार्म भरे खातिर नागरिकता ब्लड ग्रुप के रिपोर्ट और मोबाइल नंबर साथ में लेके नेपालगंज महानगर पालिका में यहाँ संपर्क करे संपूर्ण ई रिक्शा चालक लोगन के यहाँ अनुरोध किया जाता है। ई अभियान मिति 2083 साल जेठ 26 गते से 2083 अषाढ़ महीना के अंतिम तक रहे ब्यौरा जानकारी करावा जाता है। संपूर्ण नगरवासी ई रिक्शा सवारी धनी और चालक लोग उप महानगर से हाथ में यहाँ हाथ मिलाई के नेपालगंज के यहाँ सभ्य सुरक्षित और व्यवस्थित बनावा जाए। संपर्क के खातिर रवि महाउत नगर प्रहरी जवान मोबाइल नंबर 98225 82983।
2: निसंतानपन संबंधी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर नेपालगंज में यही आउँदो 2083 साल असार 27 गते शनिबार शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक काठमाडौँ र मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगंजको संयुक्त आयोजनामा निसन्तानपन सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर प्रियंका त्रिपाठी आईवीएफ एक्सपर्ट सहितको टिमबाट निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्रदान गरिने सेवाहरू ओपिडी निशुल्क, वीर्य परीक्षण निशुल्क, अल्ट्रासाउन्ड निशुल्क र ल्याब परीक्षणमा 15% छोट। स्थान मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगंज 10 बाँके सदर लाइन टाँगा स्ट्यान्ड नजिक। समय नाम दर्ता तथा अन्य जानकारीका लागि समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क नम्बर 98161469।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: कोयले पानी एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र म व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाई उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: चर्चा छ मार्केटमा, हाम्रो नाम घन्किन्छ।
3: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
4: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
3: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
4: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
3: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
4: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते?
3: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
4: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
3: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है। इके साथ हैं फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
5: आज है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है। स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
6: स्टार फर्नीचर लैंड, शिक्षा कार्यालय के सामने, बीपी चौक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680073 70 और 98195067 87 82।
7: यो कृष्ण सार FM
8: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्ती के तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी